घने वे सचिया पाठिका बिन से बापे घने रे पैसे पड़े मग दे कोई तारे वायु पैसे पड़े मग

गुरसिखी जीवन बख्शना। गुरमीत सिंह पूरन सिंह जी शुभ मनोकामना पूरन करनी चढ़दी कला बख्शनी। परविंदर सिंह जी बसंत सिंह जी खालसा पंथ की चढ़दी कला रखनी। सेवका दे परिवार विच सुख शांति बख्शनी। स्वर्गवासी सिंह साहिब भाई दया सिंह जी ग्रंथी तिना दे याद विच परिवार वालों खेम सिंह जी ग्रंथी बेअंत माया हाजिर करदे पातशाह कृपा करना। परिवार विच सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। स्वर्गवासी सरदार खेम सिंह जी तबेले वाले आत्मक शांति लई परिवार वालों जसपाल सिंह जी बेअंत माया हाजिर करदे हन। सच्चे पातशाह कृपा करना। स्वर्गी नूं अपने चरणा विच निवास बख्शना। पिछे परिवार की चढ़दी कला रखनी। स्वर्गवासी सरदार रणजीत सिंह जी सुजान सिंह जी शाहू वालों किरणदीप सिंह जी शाहू लंगरां विच माया हाजिर करदे विछड़ी आत्मा नूं चरणा विच निवास बख्शना। पिछे परिवार की चढ़दी कला रखनी। स्वर्गवासी सरदार सुजान सिंह जी आया सिंह जी शाहू तिना दे याद विच किरणदीप सिंह शाहू बेअंत माया हाजिर करदे विछड़ी आत्मा नूं चरणा विच निवास बख्शना। चढ़दी कला रखनी। जसप्रीत सिंह जाप जीत कौर जस मैरा कौर लंगरां विच बेअंत माया हाजिर करदे देह अरोगता कारोबारा विच वाधे बख्शने। सुख शांति चढ़दी कला रखनी। काका गुरबाज सिंह कुलवंत सिंह जी नहंग काके दी चढ़दी कला रखनी। विद्यादान दी बख्शीश दीर्घ आयु दी दात गुरसिखी जीवन बख्शना। सरदार सुमीत सिंह जी दीपक मनहोत्रा सुख शांति चढ़दी कला रखनी। गुरबाणी कौर बची नूं विद्यादान दी बख्शीश करनी चढ़दी कला रखनी। सरदार कीरत सिंह जी सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। इशप्रीत सिंह हरगोन कौर विद्यादान देह अरोगता सुख शांति चढ़दी कला बख्शनी। सरबजीत कौर कबीर मेबल लंगरां विच माया हाजिर करदे इंद्रजीत कौर 1000 रुपये हाजिर करदे जन्म दिन दे खुशियां वजो। त्रिलोक सिंह अमर सिंह जी विष्णुपुरी कर लंगरां विच 1000 रुपये हाजिर करदे दीर्घ आयु दी दात गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शनी।

अम्ये दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार है खुवे गुर नव निध दरियाओ जन्म हम काल खतुवे सुकहु टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय बेसुमार अथाह अगनत अतोलै ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोलै

दरबार में तेरे दरबार आसुत कल शरणकारा लक्ष्मी कड़ी तेरे दरबार आसुत देव देख रे मस्कारा धोरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूर्ण अवतार जग मग जोत बिराज रे श्री अपना प्रापा।

जल हरि थल हरि उर हरि हरि हरि हरि बंदे गिले हरि गिले हरि हरि हरि हरि हरि हरि यहाँ हरि वहाँ हरि जमी हरि जम हरि हरि जमी हरि जमाल हरि या भेख हरि या दो हरि या दो हरि हरि हरि या दो हरि हरि या बाल हरि या छेद हरि हरि वेद हरि या छेद हरि मंत्र हरि सोते जन हरि मंत्र हरि सोते हरि तंत्र हरि हरि बात हरि अमित्र हरि अमित हरि हरि रोग हरि हरि सोम हरि हरि ब्रह्म हरि हरि रंस हरि हरि हरि ब्रह्म हरि आज हरि अभ हरि अभे हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि

मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग ते बनेत नेत का कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्यात ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विष्ण के ते वेद यो पुराण के ते सिमृत समूह है। मोन दी मतार किते अश्विनी कुमार किते अंशावतार किते काल बस भय है। फिर यो पिगंबर किते गन न परत एते भूमि ही ते होय के फिर भूमि ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली शरद रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक धूप जी कपट भेष पोषती अनेक दाने वावत है। शीश को गाह भयो मल जो पे काटत अनेक दंड सो तो न डंडो दयास डांग अथ तीस को कहा भयो रोगी जो पे डर रहे उर्ध मुख मन तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना दीन सदा दामना प्रभी ने एक भावना बीन कस पावे जगदीश को। शीश पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग को चरैया फल फूल को बछैया सादा बन को ब्रह्मैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेट जो कसत शीश वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जो कसौ कामना दीन काम क्रोध में प्रभि ने एक भावना विहीन कैसे बेटे पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे कांग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कह सके तरत है। जैसे एक सौंगी कहूँ जोगी या बिरागी बन का बहू संन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पान हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ के कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होके लोगन भ्रमावई कामना दीन पर नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर औगदहा अनेक दा पुकार ही कह भयो जप कल वत्र लियो कांस बीच चीर चीर चोर डाकु ठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो नारायण पाइयत अनल आकाश पंजी डोल वो करत है। आग में जरत गत राण की बरत कर

करता करीम सोई रस करही मोई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसे सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई बुझाओ निवाज ओई मान सब एक पय अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन

जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अबोध बोध प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत बच, केते अच वच होए सपच उड़ जाएंगे। केते नब बीज अच पच को करेंगे।

देव विद्या का उदयत बानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तापसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जोग तंग कहूं भूम की भुगत मैं ब्रह्म भुगत।

रूपं कहूं चेष्टा चार चितरंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं

0: जय खंड अखंड प्रचंड किए जय जत रूप खंड जपाए दिए जय लोक तो अगर सवार छे जय लोक देव देव रचे गणपति हम दूत रघु जय दूत पतंग नंद दूत रघु दूत पतंग रखे जरा वे जरा छे रंग ने चार चतुर चक्र फिरान जय जय राग करन हरे कर वंदे सेवा न बोल मन जो जो मंगो वंदे बदन बदन जो सुर मंगो वंदे देव देव रंग दे गणपति जय जय छे भुजंग करते मन मान तुम गति लांग छे मन है एक नाम बिना रहे कोट प्रति मखले दो चार के स्वर पुत्र जो वेद उचार सके रखे जो बोल के आज के पास के बोल पास तो प्रसाद वद नाज छंद अगंज आद देव है अपन जबंज जानी देव भगवान सदा गंज गण मत भी है देव देव भैंस क्या देव देव देव देव हमस सदा देव देव सदीव सरसनाथ है वृत्त तनाथ नाथ नाथ है पंज पंज नाथ सदा गंज नाय गंज हस जीव सदा गंज जाज अनूप रूप रूप है आज जिते अनूप रूप जीव सदा सुख का बेजाब मत जानी है सुख का पंडा गोरन रूप है नरोग नर एक है रोग दाग रोग है भूत ब्रह्मा भेद है दर्द है भूत ब्रह्मा भेद है न तात्मा जात है न पाद चिन्ह वर्ण है अद्रे से भेद चतुर्दिक विश्व भेद है विश्वंबर विश्व नाद है विश्वेग विश्व वर्ण है विश्वी जमान विश्व के सदी और करण भर जन है के पिकर भेद है भेद है अलेख नाथ दिनी है सदी एक सरकट और मैं विश्व दिनी है मानी बियर में और मैं विश्व ग्रह है न तंदिया न मंत्र पसरा वही पुरान ने मैं करा प्रदे से दे ते कोई पुरा वही पुरान के प्रमेर मैं बता दे न ब्रह्म मैं बतारी है न गंजदार दबेग है को सके न पाई है
1: है ਆਦਿ ਦੇਵ ਗੁਰੂ

कहाँ धर्म को परम है, कहाँ धर्म को नास है, कहाँ चित्त की चेष्टा, कहाँ चित्त की दोषा, कहाँ ने असंजोता, कहाँ ज्ञान के ज्ञान, कहाँ रूप की सुख की गौरा, कहाँ धर्म को

दामनी प्रकाश से उतरना से जो दामनी प्रकाश से जो बलिदान से जो प्रकाश से जो बलिदान दुष्ट प्रकार में तत्त्व ले अष्टाय दबान दो दबान संत पंचान मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए जाए उस मूड करते जाए सरदार विपर खन दुर्जंधर खन तुलमर खन धरम दुजे धूमराज बिदुन संसूर्ण तुन संसुंभन पादन सुंभ मथे जय जय उसी मैं का दुर्मर्दन आद नील अगाध कथे स्व प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिमकी हो आप करते पसार जद बभूतन भय अनंत तव कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम कातर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दुख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ओच नीच क्यों नो बनाओ सब वार पार जा को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पुलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय के लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय नाथ सब रोग सोग तेरह द्रूप अनभय काल अक्षय स्वरूप करुणा निधान कावल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दु एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भे कहे नाम दास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जिद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल धल मही बंदन दुरंत जय नेत नेत निषिदिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दुख तहता उदार कई गोट इंद्र जय पान हार कई गोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निषदिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संतु बारक नी मन गारे पच्छ पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सब को प्रतपार पोखत है जल मैथल मैं बल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत न हार दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पारन पाय सके बदमापत बेद कते बेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करोग रुहान की रोज ही नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहमेव न भेव लख्यो भ्रम स्यो भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यों किन श्री पत मा पत पाए आद अनंत अगात त्वेक सो भूत भविख भवान अभय अंत बिहीन अनाथ माप दाग दुख छिद्र छय लोगन के करता हरता जल मैं थल मैं भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह भीन स्नेह सबूतन नेह विरक्त के अच्छे है जान को देत जमीन को दे।

अनेक चलावत गावत उतन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर बाप संभोहन पेट न पावे। और की बात कहा कह तू सो सो पेट ही के पट बीच बचावे। जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जाच भुजंग सब ऐसे न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहों को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद कते न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन मै जे को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बचहारे। भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। आद नाथ गाद बेगत वैग जप्योत नहीं कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश विरे कर बेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहु न्याज करे मुखकारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महमान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व न पार पावे हिंगुला हिमालय जावे गोर कर तेज गुण गावे तेरा नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाले फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के तलवाली तेरी आके में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के मंगेले वीर भंग से बुद्धेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गिन मचीन के शीस न्याव ते बते दे आए दुख दे के दलत है। जिन्हें तोहे ध्याय तिन्हें पूर्ण प्रता

पतित पावन भगत वत्सल करुणा निधान जुगहो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालिका हलत पलत के रख्या का वालिये

जी गुरु गुरु निवास अंत जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हंजलियां भरदे होए कीर्तन दे सत्ताज संतालो बिनत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सो खजाने भरपूर करना नाम दान गुर सिखी वाला जन बसना दे अरोकता बख्शनी आसा मसा संपन्न करनी यात्रा सफली करनी।

कह चौपई सम सत्र सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कह जय भादो सुधी अष्टमी रवारा तीर सुद द्रव ग्रंथ सुधारा

था जग माहे, जो तह प्रभु को ध्याए हैं अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है व्यभिचार किश नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बखै समाहे दोहरा। जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जगे आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सुहाय दोहरा। जे जे तुम्हरे ध्यान को नित उठ ध्याय है संत,

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बा सरग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छै सकै न कोई सम सत्रह सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौ लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सत द्रौ तीर तरंग श्री

मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साच

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरह चंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्माद धरती विस्माद खान।

भै विचिंद फिरै सिर भार, भै विच राजा धर्म दुआर, भै विच सूरज भै विच चंद, कहो करोड़ी चलत न अंत। भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच आडाने आकाश, भै विच जोत महाबल सूर, भै विच आवह जावह पूर। सगलिया पौल किया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार, सच एक महान।

सतगुरु देवदाता को नहीं सब सुनियो लोग सुभाया सतगुरु मिलि पाया जिन चो आप गवाया जिन सचो सज बुझाया जिन सचो

नानक जंत पाए कैस मान ले सबना जिन करते करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस।

कुड़कुड़ैने लगा बिसरिया करता किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलन हार कुड़ मिठा कुड़ मा

तेल धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नीर बस्तर पैर हुए प्रवार मलेज तान ले पुझे पूरा अब आखी अक्का कुठा बकरा खाना चौके से न जाना देखे चौका कटी कार प्रा बैठे कूड़िया मत बिटे वे मत